एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याही है जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो शब्द विचाराधीन है ओ पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फ्रे अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जि रिठे शब्द खजाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती है आप जी ने कृपा रहमत की है अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाशमान होके दर्शन दीदार बख्शे हन आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जी दे पावन स्वरूप दे सुखासन दी सेवा हुई है सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक दी खिमा बख्शन आप दे भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहन आप दे भाणे विच बतीत होवे कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेल दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आम दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

प्रभुको स्मरे से तनवंते, प्रभुको स्मरे से पतवंते, प्रभुको स्मरे से जन प्रवान, प्रभुको स्मरे से पुरख प्रधान, प्रभुको स्मरे से बेमहताजे, प्रभुको स्मरे से सर्व के राजे, प्रभुको स्मरे से सुखवासी, प्रभुको स्मरे सदा विनाशी।

प्रभुगो सिमरे दिन सद बलिहारी, प्रभुगो सिमरे से मुख सुहावे, प्रभुगो सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभुगो सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभुगो सिमरे तिन निर्बल रीता, प्रभुगो सिमरे तिन आनंद घनेरे, प्रभुगो सिमरे मसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कमूना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरहे सेहे जन जिन काओ प्रभ मया, नानक तिंजन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचहु कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा आज से आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक, दीन दर दुख पंजना कटकट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु सात अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दला, तह केवल नाम संग तेरा चल्लै, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिर माहे उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरा, हर को नाम कोट पापर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाव सूक नेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद ना पर, हर का नाम जपत निस्तरै,

ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साधक संग, जे मार के गने जाहे ना कुसा, हर का नाम ऊहा संग तुसा, जे पैडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सिंजानू, हर का नाम ते नाल पशानू, जय महा भयान तप्त बहु काम,

अर्जसकर्त संदिन रात हरर औखद साधक मात। अर्जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान। मंत्र रंग रते रंग एक नानक जन का व्रत विवेका। अर्का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिभुत भुगत। अर्का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपर न भंग। अर्का नाम जन की बढ़ियाई हर कै नाम जन शोभा पाई। अर्का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कश नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूज हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर सराते सुन समाध नाम रस भाते। आठ पहर जन हर हर जपा हर का भगत प्रगट नहीं छपा। हर की भगत मुगत बह करे नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुणगाम। सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनम दर दुख लथा। नाम की महिमा संतरत वसाय संत प्रताप दुर्त सबनसाय। संत का संग बड़भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तुल कशबर न होवे नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई सलोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टडोल। पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप दाप ज्ञान सब ध्यान कट शास्त्र सिमरत अभ्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सकल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान। हमें बहु रत्ना शरीर कटाए हमें कर राति वर्तने में करे बहु पांति।

अपनी गत में जानू आपे आपन संग ना प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुरमत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक।

मन लागा बना मीठा सर्व सुखता हूँ मन मूठा जिस जन बना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक दिन पाया आगंध शापनी दे राज खात पीत बरते अणद उलास अपनी मान कश बहुर शाले अज्ञानी मदरोस करे अपनी प्रतीता भी खोबै बहुर उसका विश्वास न होबै जिसकी बस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माते उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्वर होवत जान अनेत बिरखी छाया सुरंग लाभ्यो बिन से मन पछतावै

ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सुर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानने भेद।

ऊर्जा अवर्णा को देवोपदेश नानक सुपंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे कहु नाम जो जो जपे तस्की का तो एसा संग पावे जन को कर कृपा अंतर्वृता रे पास प्रेत मुगत पात्र को तारा सर्वरो का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत के तेना पाइय धर्म नानक तिस मिलाय

सतन को मिलियो पर अभिनास कई गुड़ मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिल लागा रंग जन को आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई गुण खाड़ियर खंड कई गोट आकाश ब्रह्मांड कई गोट हो अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार।

गणे जगदीश जियो बिन सब तस्की राज घट घट पूर्ण परम्परगा सपनी बनता बनाई नानक जीवा देख बडाई इसका बाल नाई सहाथ करन करामन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जोत सुभावे सोई फंथियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हार खरंग हसा कबू नेंद चिंद व्यवहार कबू ऊप आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य करे बपाद कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध बिकरार कबू सर्व की ओत्र बार कबू होए बहे बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यों प्रभु राखे तभी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साधक मुग्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो पर पावे ते मैंने चावे जो तस पावे सोई हुए नानक दूजा अवर न कोय कबू सा संगत पावे उस स्थान ते भवर न आवे अंतर वे ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म का संग ज्यों जल मैं जल आए घटाना त्यों ज्योति संग जो समारा।

जनमथा। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, सेतन मंद गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी। एको एक एक पछाने, एतु दुखी हो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिने निरंजन जान्या। गुरप्रसाद अपने आप सुजय दसगी जानो। तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत। सर्व रोग ते अर्जन रह, तन तिन कीर्तन केवल बखियान। ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक उपरज जन की आसा। तिसकी घटिए जमकी फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख। नानक तिस ना लागे दुख, जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे। सो संत सवेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा कराए। सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टा। अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदा सीजा, गुरप्रसाद तस बुझा। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई सूल। नह के जन्म न किस मरे, आपना चलत आप ही कराए। आमन जामन दृष्टान दृष्ट, आज्ञाकारी तारी। सब सृष्ट आपे आप, सगल में आप। अनक जुगत रज था बोधाप, अविनाशी नाई कि खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड। अलख अभे पुरख प्रताप, आप जपायता नानक जाप। जन प्रभ जाता सु सुभावंत, सगल संसार द्रय धर्मंत। प्रभ के सेवक सगल उदार, प्रभ के सेवक दुख बिसार। नापे मेल लय कृपार, गुर का शब जप है निहार। उनकी सेवा सोई लागे, सुनो कृपा करे बट भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन प्रको उत्तम कर मान। जो कुछ करै सो प्रभु का रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुभाय होवे सोए करने हार, पछाण सोए प्रभु का किया जन्मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, स्त उपजत समाये समाये। वे सुख निधान उन्हु बन आए, आप सुआप दिनो मान। नानक प्रभ जने को जान, सलोक सर्व कला भरपूर। प्रभ बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उदरिय। नानक दस बलिहार, अष्टपदी

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आप आपे एक आप विस्तार जात सुभावता सठ उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो अपन सूद सब जगत परोए जागो प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई

जानकमान प्रकाश अष्टपति शांत संग अंतर प्रभिठा नाम प्रभु का लगा मीठा सगल समय गृहसघाट माहे अनगरंग नाना दृष्टा हे नाओ निध अमृत प्रभु का नाम देहि महे इसका विश्राम।

ब्रह भगवंत तरण माया काश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल वंदन पर्वत है पार ब्रह्म जय सिया गय तय सकर्म पावन बाणी वै संतर माहे चार गुण दय दशे समायत।

अष्टपति पूरे गुरका सुनमदे बार ब्रह्म निकट कर बेग सा सा सिमरो गोबिंद मन अंदर की उतरा चेंद आस अनेत त्यागो तरंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेंती आप छोड़ बेंती करो सा संग अगन सागर तरो हर तन के पर लियो भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंध करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुसरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण वही सेवा की सेवाल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संदरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण हुए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते उज पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबका माध्यम सगल ते उदास सुंदर चतुर तथका बेथा समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकीगत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सेमृत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सास संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर्म प्रभाए साध सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिजन आपे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाव ते तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से बै भरम साध नाम निर्मल ताके कर्म

विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध

मन जाने मन कोय, मन मार्ग ठाग न पाए, मन पास्यों परगट जाए, मन माग न चाले पंथ, मन धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मन पावे मोह द्वार, मन परवारे साधार, मन तारे तारे गुरसिख, मन नानक पवे न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव दरगहमान, पंचे सुह है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान,

जो तुद पावै साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। संख जाप संख पाव संख पूजा संख तप ताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख

जाने सोई। केव कार्य आखा केव साला ही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आप हो जाने अगै गया ना सो है।

लेख जाने लेख लेख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्या दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन।

लाख बीस लाख लाख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश हेत राह पद पवड़िया चढ़िए हुए अकीस सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा थीस।

सत्यानंद। कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोह।

माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगले जगत चंग्याईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े कै दूर जिन्नी नाम त्याहे अंगै मसकत काल नानक ते मुख उजले केती

अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियांग प्रयाचंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखी पेहवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पाण पाने, नमो मान माने,

अनंगी नामे संभवती स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे संभवती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राजेश्वर परम विद्ये नमो सहस्त्रपाने नमो वस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवेशु धर्मे

खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पास सो जान ही केह जेब तात मात न जात जाकर जन मरण बिहीन चक्र बकर फिरे चतर चाक मान ही पुरतीन

में पजांग प्रयासंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दान है चतर चक्र जान है चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पास है चतर चक्र वास है चतर

है पवित्राय पृथ्वी से आदि से अदृश्य कृष्य भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छेज देश है क्या भेज भेस है क्या गांज कर्म है क्या

स्वरूपे अपंगं विपुहते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुहते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न महत न जात न पात

अनाथे प्रमाथे अजो नी नरागे नरंगे न रूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे लेखे पजंग प्रयाशंद नमहतर प्रणामे संभातर प्रणासे अगंजलनामे संभातोल निवासे कामंग बेपूते संभातर स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीम करींदा समातल निवासी अजय विभूते गजय गुनी में हरि अंग करीम ही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पवंग सुभंग सर्वदा सर्वजुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा

करे। विखंबार तलना लाभ लोभ अहंकार ताज त्रिसना बहुत नाही बोलना। कनेह तिखी वाल निकीए तुम मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आवत जया हर वासना समानी कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।

गुण गोबिंद गायो नहीं जन्मे अकारथ की ना कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीना।

छाड़ सगल जंजाल दोहरा। बाल छुट क्यों बंधन पारी, कछु न होती उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सुहाए। बल हुआ बंधन छुट, सब क

संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत

प्यास वच्चे बारंबार आ रहाओ, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बास्ते अगोचर लहिया, बास्ते

लोग सत बनता कोई न किसकी तरह सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन भाउ करया उड़ा उड़िया वैसे को सत पाछे बचरे चरिया तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करया।

है तिन सत संगत मेलाए भाई रे गुरमत साचर भाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना साचे शब्द मिलाओ रहाओ जिन्नी नाम पछाणिया तिन विटों बल जाओ आप छोड़ चरनी लगा चला तिन कै पाए लाह हर हर नाम मिलै सहजे नाम समाए बिन गुर महल न पाइए नाम न प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिदू पाइए सच सोए असुर संघारै सुख वसै जो तिस भावै सो होए जिहा सतगुर कर जाणिया तिहो जिहा सुख होए इहो सहसा मूल नाहीं भाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे सेवा करे बिडाणी अपना धर्म गवावै बूझे नाही आंदन दुख विहानी मन मुख आंदन चित ही डूब मुए बिन पाणी मन रे सदा भजो हर सरणाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहा इहो शरीर माया का पुतला विच होमै दुष्टि पाई आवण जाना जमण मरना मनमुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जात सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राति मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुरु की शरणागति हों तिन कै बल जाओ दर सच्चे सच्ची वड़ियाई सहजे सच समाओ नानक नदरी पाइए

जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी, बिरथा जन्म गवाया राहाओ, आपे जग जीवन सुखदाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत ए क्या विचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे दी वड्याई, आपे सेव करा।

चारे कुंडा भाव थक मनमुख बूझ ना पाए, जिस सतगुरु मिले सो मिले सचे शब्द सुमाए। मित्र कनेरे कर थके मेरे दुख काटाए कोय, मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए। सच खटना सच रास सचे सचे सोए, सच मिले से ना विछड़े। नानक गुरमुख होए श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे।

मन जब पै कुमरार तिनके सेवा धर्म राय कर धन सुवरन हर मन के बिकार मन तजे मन चुके मोह अभिमान आत्म राम पछाण्या सहज नाम सुमान बिन सत गुरु मुक्त न पाईए मन मुख फिरे दीवान शब्द न चिन्ह कथनी बदनी करे भिख्या माए सुमार साब किसे आपे आपे दूजा अवर न कोय ज्यो बुलाए त्यो बोलिए जा आप बुलाए सोए गुरु मुख बाणी ब्रह्म शब्द मिलावा होए नानक नाम समा

गुण गोविंद गुण गोविंद नित गाविए आप गुण कट्टनहार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या पाप जल उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइए साधु तूर लोक कमावे किसे ते जा वेखे सदा हदूर थान तनंतर रव रहा प्रभ मेरा पार पूर सच पात साही अमर सच सचे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिर ज्यून जहान नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुरबान श्री राग महला पंजमा उद्यम कर हर जप

तिस तिस कै संग मिलाओ, तिस बिन घड़ी न जीव ऊ बिन नामे मर जाओ। मैं अंदले नाम न विसरै टेक टिकी कर जाओ, गुरु जिना का अंदला चेले नाही ठाओ। बिन सत गुर नाओ न पाइए बिन नामे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यों सुंझे कर काओ। बिन नामे दुख देहुरी ज्यों कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पद नीत, हों गुर पूछो अपने गुर पूछ कार कमाऊ। शब्द सलाही मन बसे हों मैं दुख जल जाऊ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाऊ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलहन सद सदा हर राखे उरतार। सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी बार। शब्द ही ते पाइए शब्द ही ते पाइए हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे बारो बार। सब सलाह है आपको बड़ो बड़ेरी होए, गुरबिन आप न चीनिए कहे सुना क्या होए। नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोई, श्री राग महला पहला। बिन पिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिगार। धूकण दुहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाइए। शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए, हर बर सहज सिगार। सच माने पिर सेजड़ी गूढ़ा हेत प्यार, गुरमुख जान संझाणिए गुर मेली गुण चार। सच मिलो बर कामणी पिर मोही रंग लाए, मन तन साच बिगस्या कीमत कहण न जाए। हर बर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार। इक ततागै रल मिले गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए। शब्द पछाणे रब रहे।

अकथ कथा वैसोए सफल्यो बिरखरिया बला शाव कणेरी होए लाल जवेहर माण की गुर भंडारे सोए गुर भंडारे पाइए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुख दाता दुख मिटणो सतगुर असर संहार पवजल बिखम डरावण।

साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भूलिए भेखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या कर मैं तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइए गुरमुख तत् विचार सातन आप गवाया गुर के शब्द सिगार कर ही सो पिर पाया गुर के हेत अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन बसया होमे विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप न

ते बंदन जी के गुरमुख मोख द्वार। सच्चो ओरै सब को ऊपर सच अचार, सब को ऊंचा आखिए नीच ना दिसे कोय। एक ने भांड साजे एक चानण तिहो लोए, करम मिले सच पाइए तुर बख्श ना मेटै कोय। तात मिले साधु जने संतोख बसे गुर पाए, अकथ कथा विचारी जे सतगुर माहे समाए। पी अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए, घट घट बाजे किंगुरी आनंदन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरै छूटे शब्द कमाए। श्री राग महला पहला चिते दिसे धौल हर, बगे बंक द्वार कर मन खुशी उसारिया दूजे हेत प्यार। अंदर खाली प्रेम बिन टह टेरी तन शार, भाई रे तन तन साथ न होए। राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ। राम नाम तन निर्मलो जे देवे देवन हार, आगे पूछ न होवी जिस बेली गुर करतार। आप छड़ाए छुटिए आपे बख्शन हार, मनमुख जाने अपने धिया पूत संजोग। नारी देख बिगासिए नाले हरख सुसो, गुरमुख शब्द रंगावले।

तन अगन पखै पै नाल पै पौ घड़िए शब्द सवार पै बिन काड़त कच निकच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजे चाओ सह स्याण पवे न।

पीवै निर्मल धार, नाम सवावै जो भांडा होए, नाम समावै जो भांडा है, उदय भांडे टिके न कोय। गुर शब्द मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए, होमे विच गावै बिरथा जाए, गावन गावै जिन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर भावै, मंतन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गावै एक भगत करेह, नाम ना पावै बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पिर राख्या सदा उरतार, भगत करे मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै, नचै टपै भगत न होए, शब्द मरे भगत पावै जन सोए, भगत वशल भगत कराए सोए, सच्ची भगत बिचों आप खोए, मेरा प्रभ साचा साबित जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसी हर पाए, मन मरे दारू जाने कोय, मन शब्द मरे बूझै जन सोए, जिसनु बख्शे दी वड्याई, गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करणी कार कमावै, ता इस मन की सोझी पावै, मन मै मत मैंगल मिकदारा, गुर अंक समार जीवालन हारा, मन असाद सादै जन कोय, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख इह मन लया सवार, होमै बिचों तजे विकार, जो तुर राख्यन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे, गौड़ी ग्वारीरी महला तीजा, होमै विस सब जग बहुराना, दूजा पाए भरम भुलाना, बहु चिंता चितवै आप ना पछाना, धंधा करत्या आंदन विहाना, हिरदे राम रमो मेरे भाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ, गुरमुख हिरदे जिन नाम पछाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता, होमे मार गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभ कर्म विधाता, से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, धावत वरते ठाक रहाए, नाम नाव निध गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसे मन आए, राम राम करत्या सुख शांत शरीर, अंतर वसे न लागे जम पीर, आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा हर गुणी गहीर, गौड़ी ग्वारीरी महला तीजा, सो क्यों विसरे जिसके जी पराना, सुख विसरे सब माहे समाना, जित सेव्या दर गए पत परवाना, हर के नाम बिटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे दुद आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जोनी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए, गुरमत्ती हर नाम समाए, जिन्ना पोते पुन से ज्ञान विचारी, जिन्ना पोते पुन तिन होमे मारी, नानक जो नाम रते तिन कौ बलिहारी, गौड़ी ग्वारीरी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाहे, गुर शब्द मारण मन माहे समाए, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाए, जिसकी बाणी तिस माहे समाणी, तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखाणी रहाओ, जय सतगुर तय सत संगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई, जय सतगुर तहा होमै शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाओ पाए, गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत हर नाम समाए, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा, एक स्थे सब रूप हहरंगा, पौन पाणी बैसंतर सब सहलंगा, भिन्न भिन्न वेखे हर प्रभ रंगा, एक अचरज एको है सोई, गुरमुख विचारे विरला कोई रहाओ, सहज पवै प्रभ सवनी थाई, कहा गुप्त प्रगट प्रभ बणत बनाई, आपे सुत्या दी जगाई, तिसकी कीमत किने ना होई, कह कह कतन कहे सब कोई, गुर शब्द

बिपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरिया दुख रोकने रे, प्रभु सेवा जम लगे नाने रे। सोबड़ पागे न चलथान, जय जपिए प्रभु के बल नाम। जय जय नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। साधु संग सिमर गोपाल, बृनामे साधु झूठा तन माल रहो। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभु का पाणा। जग में आया सो परवान, घट घट अपना स्वामी जाने। कहो नाने जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ता कामन लाग। टो गौड़ी महला पंजमा, हर के दास्यों साकत नहीं संग। ओ बेखई उस राम को रंग राव, मन अस वरदा से तुरी सिगारी। ज्यों का पुरख पुचारे, नारी बैल को नेत्रा पाए दुहावे। गौ चार संग पाछे पावे, गाडर ले काम तिन कर पूजी। सौदे को तावे बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत। सिमर स्वामी हर साहिब मीत, गौड़ी महला पंजमा। सामत सामत निर्मल के अतीर, राम रसायन पीवत वीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट राहु। सो तन निर्मल जित उपजे न पाप, राम रंग निर्मल प्रताप। सा संग मिट जात विकार, सब ते उचे हो पुकारे। प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाते साध रवाले। गौड़ी महला पंजवा, सी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल लय पूरन बड पागी, राव परता पेख विकसे जो नारी। त्यों हार जन जीव नाम चतारी, पूत पेख ज्यो जीवित माता। उत्पूत जन हर्षों राता, लोभी आनंद करे पेख तना। जन चरण कमल स्यों लागो मना, बिसरन एक तिल दा तार। नानक प्रभु प्राण दार, गौड़ी महला पंजवा। राम रसायन जो जन की दे, चरण कमल प्रेम भगति बिदे। राव अन रसा दिसे सब चार, नाम नाने फल संसार। अंध को ते काढ़े आप, गुण गोविंद आचरज प्रताप। वाण त्रण त्रिपवन पूरन गोपाल, ब्रह्म प्रसार जी संग दयाल। कौ नानक साह कथनि सार, मान लेत जस सजनहार। गौड़ी महला पंजवा, नित प्रत नावण राम सर की जय। चोल महारस हर अमृत पी जय राव, निर्मल उदक गोविंद का नाम। मजन करत पूरन सब काम, संत संग तै गोष्ठ होय। कोट जन्म के किल बिख खोए, सिमर साध कराय आनंद। मन तन रव्या परमानंद, जिसे प्राप्त हर चरण निधान। नानक दास तिसे कुर्बान, गौड़ी महला पंजवा। सो किछ कर जित मैल न लागे, हर कीर्तन में यो मन जागे। रहो एको सिमर न दूजा पाओ, संत संग जब केवल नाओ। कर्म चर्म नेम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। ताकि पूर्ण होई काल, जाकि प्रीत अपने प्रभु नाल। सो वैष्णो है अपरापार, को नानक जन तजे बेकार। गौड़ी महला पंजवा, जीवत छाड़ जाहे देवाने। मोया उनते को वरसाने, सिमर गोविंद मन तन तोर लिखिया। काहू काज न आवत बिख्या, राव बिखे ठगोरी जन जन खाई। ताके दर्शन कब न जाई, दारन दुख दुतर संसार। राम नाम बिन कैसे उतर पार, सा संग में दोय कुल सार। राम नाम नानक आराध, गौड़ी महला पंजवा। गरीबा उपर जय खिंजय दाड़ी, पार ब्रह्म साय अगन में साड़ी। पूरा नव कर करतार, अपने दास को रख नहार। रावा दुगार प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज बड़ ताप। जिन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए। अपने दास राग कंट लाए, सरनान कर नाम चाहे। गौड़ी महला पंजवा, महजर चूठा कि दोने आप। पापी को लागा संताप, जिसे साई गोविंद मेरा। तिस को जाम नहीं आवे नेरा। राव
साची दरगाह बोले कोड़ सिर हाथ पछोड़ अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली हो बैठा प्रभ आप अपन

0: Grozia avea
1: पहले कि मैं चलो कौन बोलूंगा पहले
0: नहीं दवा बोला
1: अच्छा चलो ठीक है।

0: जी। जह मात पिता सुत मीत ना पाई,
1: मन हुआ नाम तेरे संग हाई।
0: जह महा प्यान दूत जम दल,
1: तै केवल ना संग तेरे चले।
0: जह मुश्किल हो वह अत पारी,
1: हर को नाखिन में उधारी।
0: अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह,
1: हर को ना कोड पार पर हरे।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
1: नानक पावो सुख कनेरे।
0: सगल सृष्टि को राजा दुखिया,
1: हर का नाम जपत हो सुखिया।

0: मार्ग गण जाय न कोसा,
1: हर का नाम हुआ संग तोसा।
0: जय पेंडे महंत गुबारा,
1: हर का नाम संग उजियारा।
0: जहां पंथ तेरा को ना सिया।

0: मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया
1: मिथ्या हम ममता माया
0: मिथ्या राजोवन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ स्त्री सबस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान
0: अस्त्र भक्त साध की शरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस्त पर दर्प हो रहे
0: मिथ्या नेत्र पेख

0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पै सिमरति इस रसना
0: देव प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग
0: देव प्रसाद पाठ पटंबर हटावे
1: देव
0: प्रसाद सुख से सुई जय
1: मन आठ पै ताका जस
0: देव प्रसाद तू सबको मन
1: मुक्ता को जस रसन